PFP's Kurkar Radio Sunday Anunsa, Karikramala Hami Chon Shrota, Yo Summer Ema, Sunoli Bihaniko Third Hour Ma, Mosiniko Sat Mahanunsa, Da Summer Nobede, Da Sura Minet Kaikusam, Tabiko Summer Chama Jan Kari, Kachin Marakni Nisu, Mo Yaki, Kurakani Rani Sai, GP Practice Nurse, Phoebe, Madin Kusat Mariko Kurakani, Nobede Tais Minet Zada, Rapat 4 Benihunisam, Yuzi Das Botsalai, Tira Minet Bakuda. Stay tuned, Karikramaranola, Mosiniko Sadma, Rapat. फिर भी नहीं हमें लागने नहीं सोगा रही है मीठो गीत को साथ आए ले लाए बने वेरियस आर्टिस्ट माइला इंजॉय करने होला